थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

0: भक्तिमय सकाळमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत आहे. केली वणधुणी 90.4 एफ एम वरती तुम्ही ट्यून इन आहात आणि आता आपण आध्यात्मिक विचार ऐकू.
1: क्रियाशीलता का महत्व. हे जीवन, तेरे कितने रंग रूप और कितने नाम. किसने तुझे कविता, तो किसने विधाता का चित्र, तो किसने युद्ध का मैदान, किसी ने नाटक कहा. हाँ, सचमुच धरती एक विशाल रंगमंच, मानव एक कलाकार और जीवन एक नाटक ही तो है. इस जीवन नाटक का आधार है कर्म, और कर्म करते रहना ही क्रियाशीलता है. मानव के चेतनता का प्रमाण है क्रियाशीलता, जिसके बिना जीवन की जीवंतता ही नहीं. संसार की गाड़ी खींचने वाला शक्तिशाली गुण है क्रियाशीलता. क्रियाशीलता अर्थात जीवन को गति देने

0: के लिए इंद्रियों से आवश्यक कार्य करते रहना, अकर्मण्यता को त्याग कर कर्तव्य पालन में सचेत हो कर्मठ बने रहना, कर्म के महत्व व महानता को समझ आलस का त्याग करना तथा जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाना भी क्रियाशीलता ही है। सच तो यह है कि इस महान गुण से ही जिंदगी की बड़े से बड़ी उपलब्धि हासिल होती है। भला बिना कुछ किए मिलता ही क्या है? अगर सामने जल से भरा प्याला हो और हाथ आगे नहीं बढ़ाए तो जल की एक बूंद भी गले के नीचे नहीं उतर सकती। ऐसे ही पलके झपके ही नहीं या दिल धड़के नहीं तो जीना संभव नहीं। जीवन की छोटी सी जरूरत को पूरा करने के लिए कर्म यानी गतिशीलता अनिवार्य है। चाहे आसमां में ऊंची उड़ान भरना हो या समुन्द्र के तल से मोती निकालना, किसी भी पुरुषार्थी को क्रियाशीलता का सहारा तो लेना ही पड़ता है। जीवन की गाड़ी विकास के रास्ते तीव्रता से रफ्तार तभी पकड़ेगी जब उसमें क्रियाशीलता रूपी ईंधन भरा होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भी कर्म की ही महिमा गाई गई है। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन फल तो अवश्य देता है, और सुख शांति के फल चखने के लिए क्रियाशीलता का दामन तो थामना ही पड़ता है। जैसे दीप में ग्रहत ना हो तो उजियारा कैसे हो, ऐसे ही जीवन में प्रगति का प्रकाश तभी फैलेगा जब उसमें क्रियाशीलता रूपी ग्रहत पड़ा हो। अतः क्रियाशील बने रहिए तथा जीवन का संपूर्ण आनंद लीजिए, ऐसी हमारी आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं।
1: श्रोते, आपल्या आयुष्यात प्रेम म्हणजे केवळ एखाद्या व्यक्तीशी असलेले नाते नाही, तर प्रेम म्हणजे दुसऱ्याच्या आनंदात आनंद मानणे, त्याच्या अडचणीच्या वेळी आधार देणे आणि कोणत्याही अपेक्षेशिवाय चांगले कार्य करणे। राधाकृष्ण भक्ती परंपरेत प्रेमाला अत्यंत उच्च स्थान दिले जाते। येथे प्रेम म्हणजे केवळ भावनिक आकर्षण नव्हे तर पूर्ण समर्पणाची भावना आहे। आपण देवाची भक्ती करतो, देवाकडे सुख आरोग्य यश आणि समाधान मागतो, पण त्यासोबतच आपण एक गोष्ट आणखी मागू शकतो, हे ईश्वरात जे काही मिळाले आहे त्याबद्दल कृतज्ञ राहण्याची बुद्धी दे आणि दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्याची शक्ती दे। कारण भक्तीची खरी परीक्षा पूजा संपल्यानंतर सुरू होते। मंदिरात आपण शांत असतो, पण घरात कामाच्या ठिकाणी आणि समाजातही आपण शांत संयमी आणि प्रेमळ राहिलो तर तीच खरी साधना आहे। म्हणूनच आजचा संकल्प असा आहे की मी माझ्या शब्दांनी, कृतीने आणि वागणुकीने शक्य तितका आनंद इतरांच्या जीवनात निर्माण करेन। हे होते आजचे आध्यात्मिक विचार आणि आता एक छानसं भक्तिगीत ऐकत राहून दोन्ही 90.4 FM KLE कणसू भक्तिमय सकाळ।

0: वेणुधुनि 90.4 एफएम केएलई गणसू पे आप ट्यून है और अभी हम सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज।
1: इक्यावन हजार युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: 20वां रोजगार मेला देश भर की 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
3: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है और निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
4: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
6: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया

0: का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
1: The government is supporting the sector.
2: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
0: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
3: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
2: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
3: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में, खासकर दक्षिण

0: हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
1: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला 2 उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। 2 न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान 2 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
0: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: और अब तक हम सुन रहे थे ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत होने वाले न्यूज। आप सुनते रहे वेणुधुनी 90.4 FM KLE कनसू।

0: नमस्कार, आप सुन रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसू। फार्माको विजिलेंस वीक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे एक बेहद और महत्वपूर्ण विषय पर, मेडिसिन सेफ्टी यानी दवाइयों की सुरक्षा। दवा हमारी बीमारी का इलाज करती है, लेकिन दवा का सही चुनाव, सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। गलत दवा, गलत डोज या बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे तस्किया फनीबन को, जो केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी की फार्म डी की फिफ्थ ईयर की स्टूडेंट है। दवाइयों का सुरक्षित उपयोग कैसे करें और किसी भी अनचाहे साइड इफेक्ट की जानकारी क्यों देनी चाहिए, इसके बारे में हम सुनेंगे। आप ट्यून इन रहना केली वेणु धोनी 90.4 FM पे।
1: नमस्कार दोस्तों, आज के इस रेडियो कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम तस्किया फनीबन है और मैं फार्म डी फिफ्थ ईयर की छात्रा हूँ। आज मुझे आप सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने का मौका मिला है। यह विषय हम सभी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम में से हर कोई किसी न किसी समय इसका इस्तेमाल करते हैं, और वह विषय है मेडिसिन सेफ्टी यानी दवाइयों का सुरक्षित इस्तेमाल। हर इंसान अपने जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी छोटी या बड़ी तकलीफ के लिए दवा लेता है।

0: चाहे हम मरीज हो, इलाज से जुड़े हुए व्यक्ति हो या सिर्फ दवा का इस्तेमाल करने वाले हो, हम सब दवाइयों से किसी न किसी तरह संबंध होता है। हम दवा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें भरोसा होता है कि वह हमें ठीक होने में मदद करेगा। कभी बुखार के लिए, कभी दर्द के लिए, कभी इन्फेक्शन के लिए, कभी ब्लड प्रेशर के लिए या फिर किसी और तकलीफ के लिए। लेकिन क्या हमें कभी रुककर एक महत्वपूर्ण सवाल के बारे में सोचा है कि अगर कोई दवाई लेने के बाद अचानक कोई अनचाहा या बुरा असर करे तो क्या होगा? अगर किसी इंसान को दवा लेने के बाद त्वचा पर खुजली या दाने हो जाए तो, अगर किसी को बहुत ज्यादा चक्कर आए, उल्टी हो, सूजन हो, सांस लेने में दिक्कत हो या कोई और अनचाही तकलीफ हो जाए तो क्या हमें इसे यूं ही नजरअंदाज कर देना चाहिए? क्या हमें अपनी मर्जी से दवा लेना बंद कर देना चाहिए? या फिर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि बहुत सारे दूसरे मरीजों की भी मदद कर सकते हैं? तो इन सब सवाल का जवाब बस एक शब्द से जुड़ा हुआ है और वो है फार्माकोविजिलेंस। तो सबसे पहले एक बहुत आसान सा सवाल, फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस का आसान सा मतलब है मेडिसिन की सेफ्टी। फार्माकोविजिलेंस का आसान सा मतलब है मेडिसिन की सेफ्टी पर नजर रखना, यानी दवा सुरक्षा निगरानी, ताकि दवाई इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए वह सुरक्षित रहे। किसी दवा को इस्तेमाल की मंजूरी देने से पहले उसकी अच्छी तरह जांच की जाती है, लेकिन जब वही दवाई बहुत सारे लोगों में इस्तेमाल होने लगती है तब कुछ ऐसे बुरे असर सामने आ सकते हैं जो पहले पता नहीं चले होते हैं। इसका कारण यह है कि इंसान अलग होता है, किसी की उम्र अलग होती है, किसी को दूसरी तकलीफ हो सकती है और कोई इंसान बहुत सारे दवाई भी ले रहा होता है। इसलिए दवाई बाजार में आने के बाद भी उसकी सुरक्षा की निगरानी करना बहुत जरूरी होता है, और इंडिया में दवाई की सुरक्षा की निगरानी करने वाले महत्वपूर्ण सिस्टम में से एक है फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, PVPI। PVPI इंडिया में एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी दवाई की वजह से होने वाले सस्पेक्टेड हार्मफुल रिएक्शन को निगरानी करने का नेशनल प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर फॉर फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया के थ्रू काम करता है, जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC में लोकेटेड है। IPC मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इसका उद्देश्य बहुत आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, और वो है इंडिया के लोगों के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल और भी सुरक्षित बनाना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर PVPI एक नेशनल प्रोग्राम है तो पेशेंट से होने वाले एडवर्स ड्रग रिएक्शन की जानकारी इकट्ठा कैसे होती है? यहीं पर ADR मॉनिटरिंग सेंटर, जिन्हें AMC कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनके जिम्मेदार लोग दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना को इकट्ठा करने और उसकी जांच करने में मदद करते हैं। ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स PVPI के अंदर स्थापित किए गए सेंटर्स है, जहां सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन को इकट्ठा रिपोर्ट किया जाता है। डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नर्सेज एंड दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ साथ पेशेंट्स भी सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट कर सकते हैं। यह रिपोर्ट एक बड़े नेशनल मेडिसिन सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। ADR मॉनिटरिंग सेंटर्स हर अस्पताल या संस्था में नहीं होते, यह कुछ चुनिंदा जगहों पर ही बनाए जाते हैं जो PVPI की जरूरतों को पूरा करते हैं और जिन्हें ADR मॉनिटरिंग सेंटर के रूप में काम करने की अनुमति मिली होती है। पर सबसे ज्यादा खुशी की बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिस्टम हमसे कहीं दूर नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूशन में भी PVPI से संबंधित एक ADR मॉनिटरिंग सेंटर है। केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगावी, केली, डॉक्टर प्रभाकर कोरे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर बेलगावी के साथ मिलकर PVPI एक अंतर्गत एक ADR मॉनिटरिंग सेंटर के रूप में काम करता है। हमारे केंद्र को जुलाई 2010 से मान्यता मिली हुई है और पिछले कई सालों में इस पूरे भारत में 5वीं श्रेणी में स्थान दिया गया है। हमारे AMC का काम दवा से होने वाले संभावित बुरे असर को पहचानना, उसकी जानकारी दर्ज करना और उसकी सूचना देना है। साथ ही हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, छात्रा और समाज के बीच दवाई सुरक्षा के बारे में जागरूकता करना भी एक AMC का महत्वपूर्ण काम है, और हम केली कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेलगावी के छात्रा इसे बहुत ही गर्व की बात मानते हैं, क्योंकि दवाई की सुरक्षा पर नजर रखना सिर्फ एक फॉर्म भरने का काम नहीं है, यह हमारे मरीजों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। अब आते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर, ADR यानी एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन का मतलब है दवा का प्रतिकूल असर, यानी किसी दवा को लेने के बाद होने वाले अनचाहा और नुकसान पहुंचाने वाला असर। जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है। मैं आपको कुछ आसान सा उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी इंसान ने कोई दवा जैसे एंटीबायोटिक लेना शुरू किया और उसके बाद उसकी त्वचा पर खुजली होने लगी, या किसी व्यक्ति ने कोई दवा ली और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा गंभीर डायरिया होने लगा, या किसी इंसान ने सर दर्द के लिए दर्द की दवा ली लेकिन उसके बाद उसके पेट में बेचैनी होने लगी। यह सब संभावित एडवर्स ड्रग रिएक्शन यानी दवा का प्रतिकूल असर हो सकता है। लेकिन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, सस्पेक्टेड यानी शक होना। इसका मतलब यह है कि हमें लगता है कि यह तकलीफ दवा के वजह से हो सकती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि दवा ही इसका पक्का कारण हो। क्यों? क्योंकि दवा लेने के बाद होने वाला हर बुरा असर जरूरी नहीं है कि उस दवा की वजह से ही हुआ हो। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान ने कोई दवा ली और दो दिन बाद उससे सर दर्द हो गया, तो हम तुरंत यह नहीं कह सकते कि सर दर्द दवा की वजह से ही हुआ है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। इसलिए हम मरीजों से यह उम्मीद नहीं करते कि वो खुद फैसला करे कि यह बुरा असर दवा के वजह से हुआ है। मरीजों का काम सिर्फ जिस दवा पर शक है उसकी जानकारी देना है। उसके बाद डॉक्टर और दवाओं के जानकार मिली हुई जानकारी को ध्यान से देखकर उसका आकलन कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। का एक सिंपल नियम याद रखिए। अगर आपने कोई नई दवाई शुरू की है, किसी दवा की खुराक में बदलाव हुआ है, या दवा लेने के बाद आपको कोई अचानक अजीब बिन चाहा या नुकसान पहुंचाने वाला लक्षण महसूस होता है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। ध्यान रखिए आपने दवाई कब लिया था, आप कौन सी दवाई ले रहे थे, लक्षण कब शुरू हुए, क्या दवाई दोबारा लेने के बाद वही लक्षण फिर से हुए। यह छोटी छोटी जानकारी डॉक्टर और दवाइयों के जानकारों को समझाने में मदद करती है कि असल में क्या हुआ। और याद रखिए, आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि यह असर दवा की ही वजह से हुआ है। जब भी शक हो जरूर रिपोर्ट करें। अब दवाओं की सुरक्षा को लेकर एक बहुत आम गलतफहमी है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ डॉक्टर ही दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना दे सकते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना डॉक्टर, दवाओं के जानकार, नर्स, दांत के डॉक्टर और दूसरे इलाज से जुड़े लोग भी दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, मरीज और दवा लेने वाले लोग भी दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना दे सकते हैं। इसलिए दवाओं की सुरक्षा में योगदान देने के लिए आपका डॉक्टर या कोई और इलाज से जुड़े हुए व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। अगर किसी मेडिसिन को लेने के बाद आपको कोई तकलीफ हुई है और आपको लगता है कि वह दवाई के कारण हो सकती है, तो आपका अनुभव बहुत जरूरी है। अब इसे आसान तरीके से समझाते हैं। मान लीजिए आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को दवा लेने के बाद कोई बुरा असर होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है कि आप अपने सबसे पास वाले दवा से होने वाले बुरे असर की जांच केंद्र पे संपर्क कर सकते हैं। आप PVPI रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के थ्रू भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करने के लिए PVPI या IPC टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन नंबर है, उधर भी संपर्क कर सकते हैं। और नंबर है 1800-180-3024। यह मुफ्त दूरभाष सेवा सोमवार से शुक्रवार काम के समय के दौरान चलती है। इस सेवा में कन्नड़ा समेत कई भाषाओं में मदद मिलती है, जो हमारे आसपास के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं एक बार फिर बताती हूँ, 1800-180-3024। यह सस्पेक्टेड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट करने के लिए टोल फ्री नंबर है। अगर आपको दवा लेने के बाद कोई बुरा असर होता है, तो यह मत सोचिए शायद कोई और इसकी सूचना दे देगा। आप खुद भी इसकी सूचना दे सकते हैं। आप अपने डॉक्टर या दवा से होने वाले बुरे असर की जांच केंद्र से भी मदद ले सकते हैं। अब एक जरूरी सवाल आता है, अगर बुरा असर पहले ही हो चुका है तो उसकी सूचना देने से क्या फायदा होगा? इसका जवाब बहुत आसान है। आपकी दी हुई जानकारी किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने में मदद कर सकती है। एक सूचना शायद छोटी लगे, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक जैसी अचानक और अनजाने बुरे असर की सूचना देते हैं, तो दवाओं के जानकारों को एक खास तरह का संकेत मिल सकता है। उसके बाद दवाओं के जानकार इस बात की और जांच कर सकते हैं, और अगर जरूरत हो तो दवा को सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए जब आप दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना देते हैं, तो आप सिर्फ अपना अनुभव नहीं बता रहे होते, बल्कि आप सभी के लिए दवाओं को और ज्यादा सुरक्षित बनाने में मदद कर रहे होते हैं। चलिए इंडिया का ही एक उदाहरण लेते हैं। निमोसलाइड एक दवा है जो दर्द और सूजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। समय के साथ इस दवा की सुरक्षा को लेकर कुछ चिंता सामने आई, खास तौर पर बच्चों में लिवर को नुकसान पहुंचाने के खतरे को लेकर। इसके बाद भारत सरकार ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोसलाइड वाली दवाओं से के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और दवा की सुरक्षा को लेकर कुछ और चेतावनियां और पाबंदियां भी लगाई गई। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि दवा बाजार में आने के बाद भी उसकी सुरक्षा पर नजर रखना कितना जरूरी है। जब किसी दवा की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता सामने आती है तो मिली हुई जानकारी के आधार पर मरीजों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना देना एक छोटा कदम लग सकता है, लेकिन जब बहुत सारे सूचनाएं इकट्ठा होती है यह दवाओं की सुरक्षा से जुड़े जरूरी फैसले लेने में मदद करती है। और इसी वजह से हम आज ये जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। हर साल पूरे देश में दवाइयों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दवा सुरक्षा सप्ताह के जरिए लोगों को जानकारी दी जाती है। हर साल 17 से 23 सितंबर तक राष्ट्रीय दवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस बार यह 6वीं राष्ट्रीय दवा सुरक्षा सप्ताह है। इस अभियान को पूरे देश में राष्ट्रीय समन्वय केंद्र PVPI भारतीय औषधीय निर्देशिका आयोग के जरिए चलाया जा रहा है और इस साल का विषय है दवाइयों के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना, सुरक्षित इलाज की तरफ एक जरूरी कदम। यानी दवाइयों की सुरक्षा इस नजर रखते हुए दवाइयों का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना बढ़ावा देना सुरक्षित इलाज की तरफ एक जरूरी कदम है। इस दवा सुरक्षा सप्ताह के हिस्से का रूप में हमारे कॉलेज और हमारा दवा से होने वाले बुरे असर की जांच केंद्र भी विद्यार्थियों, इलाज से जुड़े हुए लोगों, मरीजों और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम कर रहे हैं। डिजिटल पत्रिका, जागरूकता कार्यक्रम, छोटी वीडियो और जानकारी देने वाले कार्यक्रमों के जरिए हम दवाइयों की सुरक्षा के बारे में लोगों को जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब कार्यक्रमों का हमारा मकसद है कि दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना देना इलाज का एक सामान्य और जिम्मेदारी भरा हिस्सा बन जाए। अब अपनी बात खत्म करने से पहले मैं सबके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ। दवा हमें सेहतमंद रहने में मदद करती है, लेकिन दवा का सुरक्षित इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। अगर आपको दवा लेने के बाद कोई बुरा असर होता है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए और अपनी मर्जी से दवा लेना बंद भी मत कीजिए। अपने डॉक्टर या इलाज से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से बात कीजिए और हुए बुरे असर की सूचना दीजिए। आपकी एक सूचना किसी दूसरे व्यक्ति को बचाने में मदद कर सकती है। नंबर याद रखिए 1800183024 और 3 शब्द याद रखिए, सूचना दे, हिस्सा ले, सुरक्षा करें। क्योंकि कभी कभी एक मरीज की छोटी सी सूचना इलाज की दुनिया में एक बहुत बड़ी बदलाव का कारण बन सकती है। इस मौके पर मैं हमारे सम्मानित प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील जलालपुरे सर का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने दवाइयों की सुरक्षा और मरीजों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहित और सहयोग दिया। मैं हमारे दवा से होने वाले बुरे असर की जांच केंद्र के कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर MS गणाचारी सर, डिप्यूटी कोऑर्डिनेटर्स एंड सेक्रेटरी डॉक्टर संतोष रेड्डी सर, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट डॉक्टर प्रतीक्षा किनी और पूरी AMC टीम को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो दवा से होने वाले बुरे असर की सूचना देने की व्यवस्था को मजबूत बनाने, दवाओं के साथ इस्तेमाल को बढ़ावा देने और इलाज से जुड़े लोगों, विद्यार्थियों और आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और आखिर में आज हमारी बात सुन रहे सभी सुनने वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, याद रखिए हर दवा जरूरी है, हर बुरा असर जरूरी है, हर सूचना जरूरी है। आइए हम सब मिलकर दवाइयों को ज्यादा सुरक्षित और इलाज को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम बढ़ाइए। धन्यवाद।
1: ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप के लिए वेणु धोनी 90.4 FM पे सुन रहे थे। फार्माको विजिलेंस वीक में मेडिसिन सेफ्टी इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि दवाइयों का सुरक्षित और सही इस्तेमाल हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है। याद रखिए, बिना सलाह के दवा न ले, डॉक्टर द्वारा बताए गए डोज और समय का पालन करें, और दवा लेने के बाद कोई अनचाहा साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी को इसकी जानकारी दें, क्योंकि सुरक्षित दवा, सुरक्षित इलाज और बेहतर स्वास्थ्य हम सब की जिम्मेदारी है। इसी के साथ मैं मनीषा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम में नए विषय के साथ। तब तक आप सुनते रहे वेणु धोनी 90.4 FM KLE कनसु। नमस्कार।
2: ಬೆಳಗಾವಿಯ ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.
3: ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ನುರಿತ ತಜ್ಞರಿಂದ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊರ ಹಾಗೂ ಒಳರೋಗಿ ವಿಭಾಗ ಅನುಭವಿ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೊಂದಿದೆ.
2: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ, ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ.
3: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
2: ಕೆಎಲ್ಇ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಶಹಾಪುರ, ಬೆಳಗಾವಿ. ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0831 2486 286.

मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे और एक अच्छी शाम गुजार रहे होंगे। आपने ट्यून किया है बेलगावी का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेणु ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू, और मैं हूं आप सभी का प्यारा दुलारा रेडियो दोस्त और होस्ट यानी कि RJ आयुष। दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग और रहस्यमय टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। चलिए मैं आपको थोड़े से हिंट देता हूं। आज का टॉपिक होने वाला है मोर अबाउट स्पेस यानी अंतरिक्ष के बारे में। तो आप गेस कीजिए कि वो टॉपिक क्या है और साथ ही करेंगे आपका मनोरंजन। तो आपको क्या करना है, आपको बने रहना है और ये टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आपको सुनाऊंगा कुछ जबरदस्त गाने। तो बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसू पर विद RJ आयुष।

Hello and welcome back one more time to your favorite show, Be Relax, and you have tuned in to Venu Dhwani 90.4 KLE Kanasu with RJ Ayush. So, dosto, aur intezar na karwate hue, main aapko batata hoon aaj ka wo interesting topic jo ki hone wala hai galaxies ke upar. Ji nahi, main kisi phone ki galaxy ki baat nahi kar raha hoon, balki main baat kar raha hoon Akash Ganga ki, jisme hum rehte hain. Aaj hum baat karne wale hain the फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ अवर ओन मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में, उसकी गहराई के बारे में. काफी लोगों को कई सारी जानकारियां होंगी इसके बारे में, पर हमको थोड़ा सा डिटेल में जानने मिलेगा आज इस एपिसोड में. तो चलिए शुरू करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट एक्चुअली मिल्की वे गैलेक्सी इज. मिल्की वे गैलेक्सी, जिसको हम आकाश गंगा भी कहते हैं, इट्स अ ब्रेथ टेकिंग एक्सपेंस ऑफ स्टार्स, गैसेस, डस्ट, प्लैनेट्स एंड मिस्टीरियस डार्क मैटर्स. इट एस्टिमेटेड टू कंटेन ओवर 100 बिलियन स्टार्स. बात करें मिल्की वे गैलेक्सी के साइज की, तो इसका डायामीटर है वो है 1,00,000 लाइट ईयर, और इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बताता हूँ जो है 1,000 लाइट ईयर्स. मतलब बहुत ही विशाल का है. आप सभी सुनकर थोड़े से हैरान हो जाएंगे, लेकिन हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके अद्भुत दृश्य के बारे में आफ्टर सम सुपर हिट सॉन्ग्स. तो आपको क्या करना है, आपको कर देनी है रेडियो की वॉल्यूम एकदम फुल, और आपको बने रहना है हमारे साथ वेणु ध्वनि 90.4 KLE कनसु पर.

दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर और आज की रंगीन शाम में आप सुन रहे हैं आप सभी का पसंदीदा शो बी रिलैक्स ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 एफएम केएलई कनर सुपर। और आज हम बात कर रहे हैं द मार्वेलस ऑफ मिल्की वे के बारे में। और आप ये तो जान गए होंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी है क्या, ऐसी आकाश गंगा जिसमें हमारा प्लेनेट यानी अर्थ भी आता है या उसका हिस्सा है। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो हर गैलेक्सी का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है जैसे एक स्प्रिंग होता है। एंड द मिल्की वे ऑल्सो showcases a stunning spiral structure with four main arms जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले आर्म का नाम है Perseus arm, दूसरे आर्म का नाम है the Sagittarius arm, the Norma arm and the Centaurus arm। आप इमेजिन कीजिए ये एक pinwheel की तरह जैसे स्प्रिंग होता है।

वैसे ही जिसमें स्टार्स, गैस क्लाउड्स एंड द स्टार फॉर्मिंग रीजन लाइनिंग दीज आर्म्स। अवर सोलर सिस्टम रिसाइड्स इन द ओरियन आर्म, अ स्मॉलेस्ट पफ ऑफ आई थिंक द सेगिटेरियस आर्म। बहुत ज्यादा जानकारी है ना। वैसे आप मुझे बताइए, क्या स्पेस हमारा इंटरेस्टिंग है? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ऐसी ही मनोरंजन जानकारियों के लिए आपको क्या करना है, आपको बने रहना है हमारे साथ और सुनते रहना है ध्वनि ध्वनि ही वेणु ध्वनि ही 90.4 KLE खाना सू।

दोस्तों देखिए, आपने मिल्की वे गैलेक्सी के स्ट्रक्चर को समझा, कैसे मिलकर बनी है उसको समझा। आइए जानते हैं इसके मिस्टीरियस गैलेक्टिक सेंटर के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी इज इट्स सेंट्रल रीजन, जो हमसे तकरीबन 27,000 लाइट ईयर्स दूर है। एक मैसिव ब्लैक होल। ब्लैक होल का नाम तो आपने काफी मूवीज या थ्योरीज में सुना होगा। लाइट ईयर्स बेसिकली एक ड्यूरेशन होती है, यानी लाइट कितना ट्रैवल करती है एक साल में। तो 27,000 ईयर्स में लाइट जितना ट्रैवल करेगी, ये जगह हमसे उतनी ज्यादा दूर है। दिस ग्रेविटेशनल बेमोथ हैज अ मास ऑफ अबाउट 4 मिलियन टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, जिसके इर्द गिर्द एक क्लस्टर है स्टार्स का, जिसका नाम है न्यूक्लियर स्टार क्लस्टर। उम्मीद है दोस्तों आपको कुछ नया जानने मिल रहा होगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए बजाऊंगा कुछ धमाकेदार गाने और जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए मेरे साथ 90.4 KLE कनसू।

हेलो वेलकम वेलकम वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन एंड पीपल ऑफ ऑल द एजेस, आप सुन रहे हैं बेलगम का सबसे बड़ा और पहला रेडियो स्टेशन वेनू ध्वनि 90.4 FM KLE कनासू विद RJ आयुष। बात करेंगे स्टीलर डाइवर्सिटी की। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी एक घर है एस्टोनिंग वेराइटी ऑफ स्टार्स की, जिसके अपने अपने अलग अलग साइजेस है, शेप्स है, टेम्परेचर है, लाइफ साइकिल है, फ्रॉम हॉट ब्लू स्टार्स टू द कूल रेड वंस, द मिल्की वेज डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफर्स अस अ ग्लिम्प्स into the life cycle of stars, from birth in massive clouds of gas and dust to dramatic deaths in supernova explosions. दोस्तों, खैर ये सारी जानकारी तो मैं आपको बताते रहूंगा और देते रहूंगा, लेकिन आप बताइए, क्या आपने भी इसके बारे में कहीं पढ़ा था या स्कूल में टेक्स्ट बुक में? ऑफकोर्स आपने पढ़ा ही होगा, लेकिन जनरली कहीं सुना था क्या? लेकिन क्या आपको पता है, हमारे साइंटिस्ट कई ऐसी अलग अलग खोज में है जिससे कई नए राज खुल सकते हैं, कई थ्योरीज में तो ये भी देखा गया है कि सोलर सिस्टम में और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं जहाँ पर एयर वाटर और लाइफ है, या फिर एलियंस भी रहते हैं। आप करिए विचार इसी बारे में और हम सुनाते हैं आपको कुछ जबरदस्त गाने। सुनते रहिए वेनू ध्वनि 90.4 KLE कनासू।

हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और आज के शो बी रिलैक्स में हम बात कर रहे हैं उस विशाल काय आकाश गंगा की यानी मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में। बात करते हैं इसके इवोल्यूशन की यानी गैलेक्टिक इवोल्यूशन की। तो दोस्तों, तो मिल्की वे हैज इवॉल्व्ड ओवर मिलियंस ऑफ इयर्स अंडरगोइंग वेरियस फेसेस ऑफ स्टार फॉर्मेशन एंड रीशेपिंग ड्यू टू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस विद अदर गैलेक्सीज। और आज भी ये खोज जारी है इनके कैसे चेंज आता है और इनकी हिस्ट्री को समझा जा रहा है, साथ ही फ्यूचर भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है। Isn't it interesting? Very interesting. चलिए, स्पेस में आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ फिल्म्स बताता हूँ। आजकल स्पेस फिल्म्स काफी फैसिनेशन क्रिएट कर रही है, इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है। कुछ फिल्म्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2014 में आई इंटरस्टेलर फिल्म, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, चाहे तो पैसेंजर्स देख सकते हैं। और हाल ही में वर्ल्ड वाइज फेमस रिलीज हुई अवतार द वे ऑफ वॉटर और द प्रीवियस वर्जन ऑफ इट। और अब मैं आपके लिए प्ले करूंगा कुछ जबरदस्त गाने, तो सुनते रहिए आज आयुष को ओनली ऑन वेणु ध्वनि 90.4 के सुपर।

0: दोस्तों हम आज बात कर रहे हैं द मार्वल्स ऑफ मिल्की वे के बारे में। इसकी बनावट और शेप्स को हमने समझ लिया। आइए जानते हैं कि क्या हमारा सोलर सिस्टम में कई और ऐसे प्लेनेट्स हैं जिस पे लाइफ रहती है। तो आपको मैं बता दूं, साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं एंड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड और टू फाइंड अ गुड प्लेस टू लिव ऑन अदर प्लैनेट। एज वी एक्सप्लोर द मिल्की वे वी डिस्कवर एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिटिंग स्टार्स बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। सम ऑफ दीज एक्सोप्लैनेट्स माइट बी सुटेबल फॉर लाइफ एज वी नो। खैर ये तो अब फ्यूचर बताएगा कि अगर ये है या नहीं है, ये हमें भी नहीं पता। ये तो बस थ्योरीज में लिखा गया है। अब आप बताइए, आपको आज का ये इंटरेस्टिंग एपिसोड कैसा लगा? उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने मिला। एंड देयर यू हैव इट, अ ग्लिम्प्स इनटू द कैप्टिवेटिंग मिल्की वे गैलेक्सी, आवर कॉस्मिक होम। इट्स मिस्ट्रीज कंटिन्यू टू इंस्पायर एस्ट्रोनॉमर्स एंड द स्पेस एंथुसियास्ट्स अलाइक। बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको सुनते रहना है हमारा शो बी रिलैक्स, जो आता है हर शाम 5 से लेकर 8 बजे तक, ओनली ऑन वेनु ध्वनि 90.4 KLE कनासू पर। दिस इज योर होस्ट आरजे आयुष साइनिंग ऑफ। जल्द मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर एंड शब्बा खैर।
1: Everything owes existence.

गुड इवनिंग दोस्तों, आप ट्यून वेणु धोनी 90.4 KLE गणेश पे और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताज़ा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात, और इस प्रोग्राम की शुरुआत करते इस खूबसूरत नगमे के साथ जो है वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में खूबसूरत संगीत जो है आ गले लग जा मूवी से 1973 की ये मूवी है। म्यूजिक है आर डी परमंजी का और ये गाना फिल्माया गया है शशि कपूर और शर्मिला टैगोर के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे याद किया दिल ने कहा हो तुम। बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग है जो फिल्माया गया है देवानंद और उषा किरण के ऊपर। ये गाना है पतिता मूवी से जो है 1953, जो मूवी आई थी 1953 में। तो चले सुनते याद किया दिल ने कहा हो तुम।

वेणुधोनी 90.4 की एल ई कनसू पे आप ट्योने यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। मनीष आपके साथ है। दीवाना हुआ बादल कश्मीर की कली मूवी से ये सॉन्ग है जो फिल्माया गया है शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के ऊपर। ये मूवी आई थी 1964 में। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में अगला गीत आपके लिए। आप सुन रहे वेणुधोनी 90.4 की एल ई।

यादों की बारात में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है ये रात भीगी भीगी। राज कपूर और नरगिस के ऊपर फिल्माया गया ये गीत, जो है चोरी चोरी मूवी से। ये मूवी आई थी 1956 में। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में खूबसूरत सा गीत आपके लिए। सुंदर वेणु थोड़ी 90.4 KLE का नसो।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जो है आजा सनम मधुर चांदनी में। हम राज कपूर और नरगिस के ऊपर फिल्माया गया ये गीत, और ये भी गीत है चोरी चोरी मूवी से। ये मूवी आई थी 1956 में। म्यूजिक है शंकर जयकिशन का और गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे आइए मेहरबान, मधुबाला और अशोक कुमार के ऊपर फिल्माया गया एक गीत जिसको म्यूजिक दिया है ओपी नय्यर ने। तो चलिए सुनते आइए मेहरबान।

0: 90.4 वेणु धोनी के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों की बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है। अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है इतना ना मुझसे तो प्यार बढ़ा। आशा पारेख और सुनील दत्त के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग जो है छाया मूवी से। ये मूवी आई थी 1961 में। म्यूजिक है सलील चौधरी का और गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और तलत महमूद ने।
1: इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा,

वेणुधोनी 90.4 के एलई कनसो पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना हम सुनेंगे तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। देवानंद और साधना के ऊपर फिल्माया गया ये गीत जो है असली नकली मूवी से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन जी ने।

90.4 वेणु धोनी के LE कनसो पे आप ट्यूने याद के बारात में मनीष आपके साथ है। अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है रुक जा रात ठहर जा रे चंदा। लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत जो है दिल एक मंदिर मूवी से, ये मूवी आई थी 1963 में, शंकर जयकिशन जी का म्यूजिक है। तो चलिए सुनते हैं रुक जा रात ठहर जा रे चंदा।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेरू थोड़ी 90.4 KLE कलसों और यादों के भारत में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के भारत में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे,

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और SP बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारह हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेड़ोथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 की LE कनसू पे आप ट्यून है। यादव के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

करते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है, तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों के बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों के बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में, जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसो पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

बदलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसुम और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

ओनली 90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

चलते रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

0: नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है वेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।
1: या।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते हैं खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धूनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

रहे सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणु थोड़ी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए, आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

धुनी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है। यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना और

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल ना पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन। एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने की बोल है मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

थोड़ी 90.4 के LE कनसू पे आप ट्यून है, यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे जब कोई बात बिगड़ जाए। यह है जुर्म मूवी का गाना और विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री का अभिनय। कुमार सानू की आवाज में अगला गीत आपके लिए।

है सारी रात हम। किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा नगमा जो है आपकी कसम से, 1974 की मूवी है। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत जो फिल्माया गया है राजेश खन्ना

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे पैसा सावन मूवी से। ये मूवी आई थी 1981 में। गाना है मेघारे मेघारे। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में अगला सॉन्ग आपके लिए, जो फिल्माया गया है जितेंद्र और मौसमी चटर्जी के ऊपर।

यादों की बारात में अगला गाना हम सुनेंगे, किसी नजर को तेरा आज भी इंतजार है। डिम्बल कपाड़िया और सुरेश ओबेरॉय के ऊपर फिल्माया गया ये सॉन्ग, और इसी गाने के साथ मनीषा अलविदा कहती है, फिर आऊंगी आपके दिल को छूने कुछ सदाबहार नगमों के साथ, और तब तक आप भी खुश रहिए और अपनों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्या पता कल हो ना हो। गुड नाइट।

नमस्कार दोस्तों, आपने ट्यून किया है पेणुथोनी 90.4 KLE कलसो और यादों की बारात में मनीषा आपका दिल से स्वागत करती है। दोस्तों, यादों की बारात में हम कुछ ऐसे नगमे सुनेंगे जो आपके दिल के करीब थे, जो भूले बिसरे गीत रहने के बावजूद भी आप कभी भूल न पाए। तो चलिए, आपकी यादों को ताजा करने के लिए मनीषा लेके आई है यादों की बारात।

जिसमें पहला गाना हम सुनेंगे तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, एक दूजे के लिए मूवी का ये सॉन्ग है। कमल हसन और रति अग्निहोत्री पे फिल्माया गया ये गीत तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। ये फिल्म आई थी 1981 में। गाने को आवाज दी है लता मंगेशकर और एस पी बाल सुब्रमण्यम जी ने। तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा और सुपरहिट सॉन्ग।

अगला गाना हम सुनेंगे शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है, लता मंगेशकर जी की आवाज में एक खूबसूरत सा सॉन्ग जो है आशा मूवी से। ये मूवी आई थी 1980 में जिसमें अभिनय किया है जितेंद्र और रीना रॉय ने। तो चलिए सुनते खूबसूरत सा गीत शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है।

यादों की भारत में अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ, जो है दिल मूवी से। ये मूवी आई थी 1990 में। गाने के बोल है, मुझे नींद ना आए। आमिर खान और माधुरी दीक्षित का अभिनय, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा आपके लिए, जिसको म्यूजिक दिया है आनंद श्रीवास्तव और मिलिंद श्रीवास्तव जी ने।

90.4 के LE कनसूबे आप ट्यून है यादों के बारात हमारा प्रोग्राम चल रहा है और अगला गाना मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ जो है हीरो मूवी से। 1983 में ये मूवी आई थी जो बहुत ही सुपरहिट रही। इसके गाने भी बहुत ही खूबसूरत है। इसी में से एक गाना हम सुनेंगे जो है तू मेरा हीरो है।